बंदेश बंदेश चिक्का बिंकील बंदेश चिक्का बिंकील से चोले ही चकले चुके चिक्का बिंकील चुरुल लोग ला कला कहीं न नंगे क्या चुनौत है ना चले चोले से चुके चिक्का बिंकील से चोले खील से ले खून कबाल और गाना क्लिक कर अंकल जो चुलक से ले खून कबाल क्या कौन को साली बेल खुश कबाल शुनुमी क्लिक हॉप खुनाले सिक्को को 29 minutos vamos a escuchar este bonito son Mahun kasenyal reli plataforma kan ang kacho costume singkil ni mahun kasenyal. So chulo chulo kala chila kasi pal chuke sa kabingkil aran sa squad didim na detemit kovang alte barapas panteos sa kabingkil aran kiche aran isabal aran kwent salama aran arin kwente ki aran belikse arin na kuis sa squad didim na detemit pagtum peten panteos sa kabingkil eban es kaskritsine. Wala chulo lang kasi on sa lehong kapal wano kung naglitson.